0: किसका भाई है? छोटा बच्चा?
1: ना ना ना ना, मैं खुश हूँ।
2: मौजी, फिरोज नाम का बच्चा देखा?
3: आप आगे जाके देखो।
2: छोटा बच्चा देखा आपने?
1: नहीं।
2: एक बार ठीक से देखो मौजी।
1: नहीं।
2: शुक्रिया।